और जो कोई ऐसा करे तजावुज करते हुए और जुल्म करते हुए तो हम उसे अनकरीब आग में डालेंगे, और ये बात अल्लाह ताला पर आसान है।

अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम जमात अहमदिया के बारे में बात करते हैं कि उनका इस्लाम के बारे में क्या मौक़िफ़ है, और इस प्रोग्राम में हम इस्लाम की पुरअमन तालीमात के बारे में बात करते हैं। तो अब हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं।